गुनहगारी में कब तक उम्र काटूं, बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे, बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे। अल्लाह, हाउ लॉन्ग आई एम गोइंग टू रिमेन इन द पाथ ऑफ सिंस। चेंज द डायरेक्शन ऑफ माई लाइफ, क्लीन एंड प्यूरिफाई माई हार्ट। गुनहगारी में कब तक उम्र काटूं, बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे। Amen.

बख्श दे मेरे सारे गुनाह। ओ माय अल्लाह, देयर इज नो वन मोर सिनफुल देन मायसेल्फ इन योर एंटायर क्रिएशन, बट यू टू आर सो फार, सो फॉरगिविंग, सो फॉरगिविंग, सो फॉरगिविंग। फॉरगिव ऑल माय सिंस माय बिलव्ड अल्लाह। ये भेज अल्लाह तबारक व तआला।

ये खत्म हुई और छोटे से दो चार अल्फाज मौलाना को पसंद हैं, वो और थी एक जी जी जी

हैं, बस एक अगर हूं तो खार में हूं। मुझे भी कुछ फिक्र आखिरत हो, बहुत ही गफल

समझ कर्ण करना जुदा, सर्वरे अंबिया सर्वरे अंबिया। गुजरी बेबंदगी सब मेरी जिंदगी, हे हिजाब आप से हक से शर्मिंदगी। कहिए मेरे लिए

फिर मौत है. हाउ कैन वी एवर प्लेस ट्रस्ट ऑन दिस लाइफ दैट वी हैव व्हेन इट डिपार्ट्स नोबडी नोज. से तुझको फिक्र उकबा कुछ नहीं. वी पुट नो कंसर्न दैट देयर इज अ लाइफ आफ्टर डेथ. वी आर बिलीवर्स इन अ लाइफ आफ्टर डेथ. दैट्स पार्ट ऑफ अवर ईमान. इन ग्रेड वन और इवन बिफोर दैट द मदर्स टीच द आमंतु बिल्लाही कमा हुआ बे अस्माई ही व सिफात ही व कबील तो जमीया अहकाम ही. Then we talk about Iman Mufassal, in which we believe in Amantu Billahi wa Malaikatihi wa Kutubihi wa Rusulihi wa Al-Yawm Al-Akhir. Now this Yawm Al-Akhir that we learn. Now when are we teaching the child that? When the child is still in the mother's lap. At that time they're teaching the child Yawm Al-Akhir. So that as the child keeps on growing, it settles in the mind that there is a last day. And then there is a day of judgment. There is life after death. So tujhko ghafil fikr-e-uqba kuch nahi.

रूह रग रग से निकाली जाएगी, तुझ पे एक दिन खाक डाली जाएगी। एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। Nobody will be able to prevent the angel of death from taking away the soul from every part and every limb of the body and every vein. He will extract that soul, and then sand will be put over us in our graves. Aakhirat ki fikr karni hai zarur, jaisi karni